स्थित मांडवीय ने कहा है कि ये

0: सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित है।
1: Collaborate closely to maintain security along

सेवकों से इस तरह के किसी भी संदेश के ढांचे में

तो वह साधी नौकरी शुरू होगा और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल भोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीत कर मंगोलिया में आयोजित उलान बतौर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान में

you by two scrubs and a mug. दुनिया ग्यारह बजे विविधाम में सुने आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग का संपादित अंश प्रभाग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव विभा रानी प्रोफेसर प्रशांत मोरे नरोत्तम बेन ममता वर्मा

ஆட்சி தொடங்கும்.

से ही कार्यक्रम आज करेंगे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथिल प्रदीप से मंदाक्षी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। प्रस्तुति अनुष्ठी पाठक की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे घायल गीत। 5:30 होगा कार्यक्रम तरंगी।

पर शनि व सिंह रंजन 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे। सैनिकों की शौर्य गाथा आज महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा आपको सुनाएंगे। प्रस्तुति श्री कांबे जी। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम साज और आवाज। 8 बजे हवामानी कार्यक्रम में सुनेंगे झल की कुत्ते से पहले लेखक और निर्देशक गुरमीत रामन। 8:15 पर आप सुनेंगे चुटी लोक। 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनेगा आज के फनकार और 10 बजे आपकी नींद छाएगी। 10:30 पर होगा कार्यक्रम घर की जाए जांच। घरों का मिली ये की जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये विविध भारती है। आइए सुनिए श्री रामचरित मानस का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्श की मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाए। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की अपनी माथे पर धारण की। यही अश्लील का ये अद्भुत दृश्य है जहाँ उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं नगर निवासी सेवकगण सेनापति मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ

0: तक हमने 3 ताल, रूपक, 1 ताल और 6 ताल शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले तालों की बात की, इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
1: अभी ये जो है जैसे 3 ताल, रूपक, 1 ताल, 6 ताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है। अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारहमासा ऐसे कई सारे प्रकार है। तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर 3 ताल का उदाहरण लेते हैं तो 3 ताल है 16 मात्रा, मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा। कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न 3 न कभी न, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो इसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है,
0: और अलग अलग गीतों में रंगरजी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
1: हाँ, कई सारे रूप है। तो इसमें हम लोग

किसी पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं। तो अभी केरवा जो है वो केवल ये मूल ये होता है केरवा है, धागे नती नकदी नती। अब वो जो केरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है और हर गीत में हमको एक नया केरवा का रूप देखने को मिलता है, वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक आध दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ।

0: से केरवा के कई सारे रूप
1: है
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। तो हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है। नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, उसको कोई नाम न दे हम लोग।
1: तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है। तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं। कुदरत फिल्म का गीत है सोने और रंगीले क्या जादू किया लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में केरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है। तो ये जो इनकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है।
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया है एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमाई ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी
0: जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है, ये बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है उसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है। तो वो जो प्रयोग है तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ये जो है दिन दिन धा दिन तक दिन तक दिन दिन धा दिन तक दिन तक, ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल बजाया गया। तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है ललित स्वरूप वो है धा धिन धा धिन धा धिन ला ला। मतलब जो कहरवा चलता है धा धिन धा धिन ला ला धिन ला ला, ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमारी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमारी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन भी
1: सावन भी कर जाए, तो इसमें जो धुमारी जो हम लोग महाराष्ट्र में जैसे कहते हैं।
0: हाँ।
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राज मधुबंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर।

体是不会不敢拒绝他。有的时候他必须受到一下子啊，你的一些挑战，然后。

और किशोर कुमार के जीवन के रूप में भी विकास फिल्म का यही था। मैं जानकारी का लिखा रवि का संगीत था। बोल रहे थे गीत कार्यक्रम श्रोताओं।

是在哪里学的？圣经谁拿过？

फिर से बयान किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और

sociedad.

sempre per lì, con le che

किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे शेष भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें लोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले

से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए। यानी खाना न तो जरूरत से ज्यादा पका हो और न ही अध पका हो। खाली रखने पर भोजन हो न हो, भोजन की चाह जरूर हो। इन्हीं से भोजन में स्वाद की भूमिका जहाँ तक संभव हो भोजन में सब रस और सभी रंग शामिल किए जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं पी रहे बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उसकी खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देख कर भी

साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू स्थान की बात मानी जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। कुछ वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने के बजाय एक या दो डिशेज तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है।

para mí.

आपने ये पैदा

Sean, Father, and

0: पर मार नई दिल्ली अगर किसी भी हेडिंग पर कुछ निकाल देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: शुक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात।

on you.

0: से मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है जिस तरह भी चाहोगे ज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं से
0: संपर्क कैसे करो?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
0: ओह 8700001

Thank you.

tendencias de Erasmus.

0: की बात है। प्रधानमंत्री आकाशवाणी
1: पर मन की बात के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1800
1: आपको निमंत्रण देता है मन की बात के लिए आपके मन की बात भी

Thank you.

给支撑你。

0: हेलो मनमोहन, नमस्कार मैडम। आप किस पहचान है? काशी कुमार पड़ा जो पड़ता है ना, सुन लो
1: सिस्टम आपका है और आपकी तरफ पर ही आ
0: बहुत ही पुरानी फिल्म है। राज कपूर और नरगिस मोतीलाल और प्रदीप कुमार द्वारा फिल्म है। राज कपूर का बनाया हुआ फिल्म चाहते रहो।
1: जी हाँ, मैंने भी इस फिल्म के बारे में सुना है। कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: इसमें गाना भजन है। भजन क्या मतलब भक्ति गीत है। जागो प्यारे जागो।

कबूल है। इसका जो गीत लिखा है शैलेंद्र है और संगीतकार इसका लता मंगेशकर इसको गाए हैं राघव मोहन प्यारे।

हम आपको आपकी फरमाइश सुनवाते हैं और ये

बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है,

0: मुझे सुनना है रफी साहब की आवाजों में गाने के बोल है मासूम चेहरा ये कातिल अदाए के बेमात मारे गए हम बेचारे दिल से दीवार पे लगी है
1: जी हम आपकी फरमाइश आपसे लेकर आते हैं सुनवाते हैं दिल से दीवाना फिल्म दीवाना

0: son all names y apellidos.
1: Sí, claro.

0: Sovereign.
1: Hello, Manuel. Namaste.
0: Good evening, Mr.
1: मौसम तो मेरा ठीक है, हल्के के बादल छाए गए हैं और हवा भी चल रही है, महसूस है और
0: बढ़िया है
1: जी। मौसम इधर लगता है करीब करीब मान लीजिए अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और मौसम कभी धूप निकलती है तो फिर बारिश होने लगती है, तो मिला जुला के मौसम में बहुत चीज़ कर रहा है।
0: ये गर्मी यूँ ही पड़ती है

0: आज तो पूरा टेम्परेचर है
1: गर्मी, जब मौसम बदलता है।

0: हम लोग को आदत पड़ गया है, गर्मी या ठंडा गर्मी में काम करने के लिए आदत पड़ गया है, तो उतना नहीं बुझाता। फिर भी गर्मी है तो आदमी को ज्यादा गर्मी लगेगा।
1: तो कहा गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा,
0: बर्दाश्त करने का जो नहीं किया वो थोड़ी इसमें कर पाएगा। गर्मी के मौसम में ये वाला गाना सुना दीजिए, गोविंदा का फिल्म है, जेठ के दोपहरी में पांव जले हैं, ये वाला गाना।

0: दोनों बेटों में से एक आपको इससे अकेलापन महसूस नहीं होता होगा, है ना?
1: पटल को नाम ले लेते
0: हैं।

जो है बड़ी तेज बढ़ रही है,

fight on the night of Old Hill.

Okay, finally, don't see a good TV with a type of TV, as

0: बच्चियों को अपनी बात कहने का, जिसके फोन पर हम से बनाए अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। बच्चियों के लिए बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मैरिसन से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, तर्ज बनाई है कल्याण जी और हिंदी में।

ऐसी ही एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुना रही है सुहाना सफर इस फिल्म का भी आनंद बच्ची की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छिपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके राय उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सिवाय चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्षेत्रीय बदायूं की रचना हेमंत कुमार के संगीत से सजा ली थी, गीता दत्त ने गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

बीच तनाव है। अभी गीता दत्त की आवाज में लीजिए अब आपको सुना रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज है, युगल स्वर है। मल्टी सुल्तानपुर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: एक ही बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंटीरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम से तो खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी जल्दी होती है, और अगर हम टाइम पर ना होते सख्त ध्यान की जरूरत पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं और फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे।
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है कन्या।

फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद लक्ष्मी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत

आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आदि बर्मन ने संगीत तक किया।

आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बच्ची ने इसे लिखा है, आदि बर्मन ने संगीत तक किया।

about shooting at the foot, starting to meet with him, how is it? आपके साथ आपके शरीर सफर की हमराह की बनेगी आपकी साथी पूजा नरायण, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहीं पर ही नहीं है, है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यासे पढ़िएगा, प्यासे पढ़ना आगे। मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत में आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके

हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना। प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को। हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में।

की पहली बार श्रीलंका सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं, बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

बिना सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ बताओ मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश दिए गए हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नई उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो जो सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हूँ तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियाँ भी खुशियाँ दामन में समा जाती है, जिया बेकरार होने के साथ बाहर खा जाती है, भवे भी गुनगुनाने लगती हैं, बात की हर कड़ी सुनने लगती है, तभी गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा जैसे कि उन हवाओं में इन फजाओं में आजा आजा से तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे।

से पहले आपके लिए हम इबारत ही तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ होता है जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब भी आग उठी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए, फिरती हूँ मैं सबसे तेरे नाम पर, आंचल में भरी है मैंने खुशियाँ इस संसार की, कलियाँ खिला दी तूने मेरी गुरियंग में, जीरा ने तेरी यादों में कैसी सावली महफिल सजाई है, दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक जोड़ बंधाई है, आग ओढ़ कर पहली जवानी। मेरा नाम सौ बार उभरा है, आंखें चार हुई तो कैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर में

बंटवारा है। जा रे जा, कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ। हर इंतजार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है। हवा ने तेरी खुशबू को हंसू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल से कोमल तारों को। इंतजार की लंबी रातों में सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है। हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुँचे हैं, अब मेरी हर धड़कन में बस तुझको ही पुकारा है।

से जाओ ये थी आज की इबारत कविता के रूप में प्यार से ओतप्रोत हाँ प्यार से भरी बातें प्यार से भरी है इबारत एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है अंत हुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी जीवन दे जाता है कि वो सर्व से पानी पानी हो जाती है मन बस में नहीं रहता बदन का तांतार पिघला देता है वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है

लिए सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग भी जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की नली बहुत सक्रिय होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसकी पुरानी आह के लिए चुभने लगती है।

सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल तक सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादित आशा नाजरी।

0: अच्छे जर्जी जलों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनका गांव में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके कदम पड़े हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
1: रांची से बोकारो जाने के

सारे वरीय पदाधिकारी हमारे पंचायत में जाकर ग्राउंड लेवल पर जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पर जो हम लोग इनपुट मिलेगा उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं जो भारत सरकार की योजनाएं उनका हो सके।

शब्दों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल के ताल में रखा जा रहा है और कितना खूबसूरत गीत

संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आघात यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहाँ प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बसती है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है या पानी की तुम आए तो कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारती हो तुम्हारी दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ मेरी हर धड़कन पर बस

कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखना चाहे तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूद थी उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है

को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल।

सुनकर बताएगी का कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही है जारी जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में वो था कि श्री लता मंगेशकर और मोती साथ ही कार्यक्रम की आवाजों में इंद्रजीत सिंह, तुलसी कालीखांसी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था।

कुछ बताओ, आपको बिना माने ही वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और शाश्वत के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रहती है।

थे, उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी है जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया। और ये शो सुनकर गाना है, इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीत पर किया था और ये शो सुनकर ही सो वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिख कर दीजिए हैं। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि परोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही थी।

Mon père va faire

0: प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। श्रोताओं, आपके जवाब में मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी के पानी से आजाद होना भी बहुत भला है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम भी सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला से बनाना है इस सफर को। और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें जीते हुए शब्दों से प्यार।
1: इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक
1: जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आपको सुनवाते हैं मिलन चंद का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है, यानी स्त्री जो प्यार की वो स्रोत है, जिन्हें प्यार तो है एक संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में सिरों पर गा रही है, वो कौन है?

सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती है और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही है। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी है हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी है, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो जी देखिए, उसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी शामिल हो जाए।

की जगा रहे हैं।

श्रोता हमें संदेश भी किए जा रहे हैं उनकी कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं वीर गांजा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हजरत जयपुरी के बोल किशन से जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग

भी इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिख कर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर राजा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी भी छुपा रही हैं,

तुम्हारा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा, आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

शरीर है टूट फूट दुरुस्त थकान हो जाता है। आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियाँ मांसपेशियाँ यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है। ये जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्नदाता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही है जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे योग्य बना देते हैं। जो लहलहाती गेहूँ या धान की बालियों में पक कर अनाज के रूप में हम तक पहुँचता है। हरी भरी सब्जियाँ हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली

सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए। यानी खाना न तो जरूरत से ज्यादा पका हो और न ही अध पका हो। थाली में छप्पन व्यंजन हो न हो, भोजन की क्या जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में छद्रस और सभी रंग शामिल किए जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम भोजन के लिए नहीं पी रहे बल्कि पीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देख कर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दे, तभी भोजन

जीवन के आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेहनत शान की बात मानी जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं, हर बात में खाना बर्बाद होता है। कुछ हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियाँ अब दालें बनवाने के बजाय एक या दो डिशेज तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत 10 दिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों को ही सीमित नहीं है, भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से

over the end of the day.

कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू बिजली के उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट, सात समाचार।

सभी का स्वागत है। ये है रिजर्व भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। साहिल उधमान जी के बोल है, धुन सजाई है रवि ने।

क्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल अजहान नीचे की बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: का आगमन आपके शरीर में होता है। इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे मरीज को खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना करें, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें आज जो शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, उसकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा भाई ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, सिर्फ कुशल है।
1: तो सुनिए और मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ में जी रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमिका संगीत।

0: शब्दों से क्या था?
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूँ, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है

stopped in the

शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। छठी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने इन्होंने फरमाइश की है। छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जैसी फिल्म का संगीत।

शामिल किया है। खंडवा रोड सनावर मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण, इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार उषा याग्निक और कुमार सारे, लीजिए आपको सुनवा रहे हैं

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन
1: वेरी इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एनी जी आई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड वेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंसी डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें आज जो शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीते हम अगला घर शामिल कर रहे हैं नेहरू चौक पेठा से ये खत हमें आया है।

0: उन्हें छठे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी आकांक्षी हमने कक्षा छह में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, उसकी तो आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, जबकि

साल ऊपर कोट बुलंदशहर से भी इसी बीच की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम,

एक नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत राष्ट्रीय रक्षित चित रंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा ऋषिका ऋचा प्रीति सागर रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल शांति महाजन मुकेश महाजन ने साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और समस्त सन्नति पंचोलिया परिवार और सन्नति पंचोलिया ने और उसके अलावा छत्तीसगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी

की आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुलेश्वर वारखंड वासी, योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, उन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजनू सुल्तानपुरी की बोल, मदन मोहन का संगीत।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मन चाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों की, अपनी मनचाही गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायण या को नमस्कार।

शिक्षा द्वार मन बाहर से बड़ी बात

बच्चों तुम्हें दिखाने था कि हिंदुस्तान किया देवी हमें आजादी बिना खर्द बिना ढाल हम लाए हैं तूफान से डुबकी निकाल के। न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख से भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था, और सर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई

उसमें उनको लगा कि इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग कि नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चित्रकूटा का श्री रामचंद्र उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है इस देश में,

0: जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा, जब तक मैं घर जाऊंगा हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी, पान वाले की। उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन। उन्होंने उस पर वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे। उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में। महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में, तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने शीतलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब श्री रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है, ठीक। तो शीतलकर काका ने कहा ठीक है अब सुवीनियर में देना है लाइन, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। एन एस वर्जन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है ये है वो है सब लोग खुश हो जाओ हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है। अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब शीतलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो सब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गया उन्होंने दिल्ली। तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी तो उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में, और शीतलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इन्विटेशन। ये अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना, जी वो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर पीरों ने है प्राण गंवाए। जी तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राजा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना हो। और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी देश के लिए। जी पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, अपने लिखा किसने है। जी तो लता दीदी ने कहा नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है वो नहीं आए हैं। तो वहाँ पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब यशवंतराव चव्हाण, उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, तो देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं।
1: जी लक्ष्मीकांत कह रहे हैं जोड़ी के लक्ष्मी,
0: लक्ष्मीकांत जी वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहाँ पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे, तब मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी चला गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि इन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस से इसको सुन रहे हैं कि आपका लिखा गीत है, चल नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदू भी गाती थी। ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी,
0: तो ये भी नसीब और डेस्टिनी
1: जो होता है
0: अच्छा
1: होता है
0: जी। उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए। तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो काजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ

0: दे दीजिए। आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा, तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदेशी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और साथ उनके गीतों में राष्ट्रीयता की अध्यात्मता और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला। और कभी ये गीत देखा देखा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है। ये मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहाँ पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया।

0: हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है। बातचीत को जब हम कर रहे हैं, निर्मल जी कभी प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्त की रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों की। और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल रहता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे, आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल में हमको मौका मिलता था। तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो

0: अभिनेता भी आते थे, हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार उस वक्त के लोग जी काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे, तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर, कोई भी आए जाए नेता उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं और वो सुन भी लेते थे, ऐसा माहौल था तब उनको वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनके गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था जो वहाँ के बैठते थे उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहाँ पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है?
0: हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। फिर वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहाँ रोज आते थे और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं का,
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहाँ अखबार आते थे और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं हुई होती। बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 6:15 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे, वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ जी, एक नहीं दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी। जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर क्षण करने
0: वो ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाय कुश्ती करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मिथुन जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनाए आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उनसे भी कुछ डालो।
1: अरे
0: ओ रोशनी वालों,
1: वाह क्या बात है, मिंदी कपूर साहब का गायन सुन रही है और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही वचन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।
2: सपनों को बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपका 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें।

0: ये पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने सीखा, कैसा लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीज़ें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं गाती, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये

0: मुझे भी वो चाहिए। वो कभी नहीं रहा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, रहते हुए
1: उस माहौल में रहते हुए।
0: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
1: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहाँ से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मिथुन जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गाके बता?
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था। जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा बप्पी लहरी ने।
1: जी,
0: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी। मैं जानती हूँ तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
1: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
0: हाँ, हम अभी
1: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था।
0: हाँ,
1: काम का।
0: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
1: जी,
0: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
1: जी,
0: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर उलक उठे वे जो थे गले गए, लो फिर उलक उठे वे जो थे गले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, आज वही छिन उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लह लही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है, हमको उसको और आप अगर सुने कि कौन उनका गाना है जो आप बाद में बता सकते हैं, वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाना है, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये गीत भी उनका बहुत के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उगाई जा रहा
1: और यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
0: ठुकरा नहीं सकते,
1: भुला नहीं सकते,
0: ठुकरा नहीं सकते।
1: हाँ, तो आप कहिए तो यही गीत
0: ये जरूर बचाइए, बहुत अच्छा गीत है,
1: सुनते ही।

0: कर रही थी उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए अपने गीतों के जरिए कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था हमें पता है जब आपका जन्म नहीं हुआ था लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आपको खाई होंगी उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी

0: बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियाँ थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे।
1: और ऐसे में जब कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुँच रहे होंगे, तो क्या माहौल होता है?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयाँ देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति भी आगे मिली है। जो बीच था वो ही सुन रहा,
0: मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी जी।
0: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े अस्वस्थ नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आज़ादी उसके दो चार साल के बाद, उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना
0: मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐसी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहाँ पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सत्य साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप।

0: चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भी मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइड से काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है।

संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत थी। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियन चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इंटीरियर ओपिनियर आते थे, अच्छा बोलते दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी

संपादन सहायक धर्मा सोलंकी, दलित भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पांडे। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में

sad that they were. So, it is hard to be friends.

Awesome.

अंतर और सुबियानों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक

उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट बन गया है। संघर्ष से होर्मुज दरियाओं मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अठारह वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण

HIV cases in Jasiki, Alai, Sangam Jasiki. इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। हम आकाशवाणी जमशेदपुर की

0: baptism. Without praying, then said Mark,
1: यहाँ पर निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हम आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध भारती केंद्र से बोलते हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग कार्यक्रम में सुनिए चंद भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं सरबजीत यादव अनुज। सबसे पहले

और लोक कार्यक्रम में सुन रहे हैं चंद भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं सरजीत यादव।

अजित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में समीर के बोल नवीन सेवन का संगीत कार्यक्रम के आज के विषय में हराना फिल्म से गीत सूर्य त्वाटिकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ें हैं।

दूसरा घर है और भाजपा के इस घर में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में छिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।

आपको तो निर्बाध बनाए रखना। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोल

14 जून 1899 को सांबा जिले के बगुना गांव जो अब बजिंदर है में हुआ था। सांबा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। ये भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। बेहद खूबसूरत नगर को

के दादा हमीर सिंह और पिता सूबेदार लाखा सिंह ने भी एक सैनिक ग्रुप में अपनी मां को भूमि की

कर्नल गोविंद सिंह ने पाला था। कम उम्र में ही अपने पिता को भी खो चुके थे। साथियों, कितनी गर्व की बात है कि आपके परिवार की कई पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपने जम्मू के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 14 जून 1921 को जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स में कमीशन लिया था। वे मई 1942 में

इकलौते ऐसे आरोपी थे जिन्होंने खुद युद्ध भूमि में अपनी वीरता का पत्थर लहराया। उनकी वीरता साहस की गाथा से जम्मू कश्मीर का इतिहास रोशन हो उठा। साथियों, तभी तो उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के रूप में याद किया।

जाएगा, वीक उन्हीं के जाएगा। साथियों, भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन से दंगा फसाद चरम पर पहुंच गया था। सुंदर वादियों, कलकल बहती नदियाँ, हिम शिखर और मनमोहक रंगों से भरे खूबसूरत फूलों के इलाके, ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई हो। साम्प्रदायिकता की ज्वाला ने जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा, उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। हालात बड़े ही भयावह होते जा रहे थे। ऐसे में दुश्मनों की नजर पैनी हो चुकी थी। देश की आजादी के बाद दुश्मन सेना ने कबाइलों के साथ मिलकर ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सन 1947 को उस समय जो वहाँ के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद पर दुश्मन सेना के कब्जे की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहन ली और उन्होंने तब ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को बुलवाया। ये बात सुनते ही कि महाराजा खुद युद्ध भूमि में उतरना चाहते हैं, ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने उन्हें किसी तरह से समझाया कि उनका इस तरह से जाना सही नहीं है, वे खुद उनकी जगह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराजा हरि सिंह को मोर्चे से दूर रहने की सलाह दी। साथियों, ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने महाराजा के साथ एक बैठक में अपनी योजना पर विचार किया और बाद में बादामी बाग पहुंचकर करीब 100 सिपाहियों से जाकर मुलाकात की और अपनी योजना समझाई। उन्होंने सरकार में सैन्य मुख्यालय को संपर्क किया और अपने लिए और सैनिकों के दल की मांग रखी। उस वक्त मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने करीब 70 जवानों को मोर्चे पर भेजने की बात कही और उधर महाराजा हरि सिंह ने मुख्यालय की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक लिखित आदेश दिया कि ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में दुश्मनों को आखिरी सांस और आखिरी जवान तक उन्हीं के पास ही रोके रखे। कैप्टन ज्वाला सिंह संदेश के साथ 24 अक्टूबर की सुबह एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ उन्हीं पहुंच गए। कैप्टन ने सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को सौंप दी और महाराजा का पत्र भी उन्हें दिया। इस मौके पर वे अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर थे।

बने एक पुल को उड़ाने का हुक्म दे डाला ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, उनके नापाक इरादों को रौंद दिया जाए। दुश्मनों की सेना में जब इसकी खबर लगी तो उन्हें हलचल होना, रुकावट होना स्वाभाविक थी। अब क्या करें, कुछ समय के लिए वे रुक गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। हमला दोनों तरफ से भयंकर था। पुरी का वो इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। कुछ जगह करीब दो घंटे बाद फिर से दुश्मनों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक पुल उड़ाया जा चुका था। वहां के सभी पुल लगभग तहस नहस कर दिए गए थे, यानी मार्ग बाधित कर दिया। शाम तक अपने मिशन के तहत ये कार्रवाई अंजाम ले चुकी थी, लेकिन उधर दुश्मन भी कब रुकने वाले थे ये भी आ गए। साथियों, इसके बाद ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने रामपुर इलाके में दुश्मनों को रोकने का फैसला किया और काली स्याह रात में ही वे वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने लिए खंडक खोद डाली। रात भर कड़ी मेहनत कर जवानों ने खंडक खोदी थी, लेकिन सुबह तड़के ही दुश्मनों की सेना की गोलाबारी शुरू हो गई। इधर जवानों ने मोर्चाबंदी इतनी कर रखी थी कि पूरा दिन गोलियां चलती रही, लेकिन दुश्मनों को एक इंच भी आगे बढ़ने का मौका नसीब नहीं हो पाया था। वहीं दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे के रास्ते से सड़क पर आकर घिरा, जिसके कारण महाराज के सिपाहियों को वहां से निकलने का रस्सी भर भी मौका न मिल सके। यानी दुश्मन भी बड़ी चाटी तरीके अपना रहा था। युद्ध में ऐसा ही होता है, एक के बाद एक पहले योजनाएं बनाई और खेली जाती है। कब किसको सफलता मिलेगी ये कह पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में डटे रहते हैं। साथियों, उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मनों की योजना का पता चल चुका था और तकरीबन सुबह का समय रहा होगा, अपने साथियों को पीछे हटने और शेरी पुल पर डट जाने का आदेश दिया। पहले दुश्मनों की रुकावट को उन्होंने आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन अभी सिपाहियों के वाहनों का काफिला उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था कि अचानक से गोलियार मंदिर के पास से दुश्मनों की सेना ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी थी और काफिला इसकी चपेट में आ गया। दुश्मन की गोली वाहन चालक को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गया। कैप्टन ज्वाला सिंह ने बड़ी तत्परता से अपनी गाड़ी के नीचे आकर देखा तो पाया कि तीनों वाहनों के चालक शहीद हो चुके थे। उन्हें ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह कहीं नजर नहीं आए, वे आश्चर्य में भर उठे थे। उधर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनका ड्राइवर भी शहीद हो चुका था। साथियों, वे आगे सेरी पुल के पास पहुंच चुके थे और गोलियों का जवाब देते जा रहे थे। अब तक वे काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनकी अद्भुत वीरता कम नहीं हुई थी। उनकी इस युद्ध में दाई टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लहू बह चला था, असहनीय पीड़ा के बीच वे मोर्चे पर डटे हुए थे। उन्होंने उसी समय अपने जवानों को आदेश दिया कि वे पीछे हटे और दुश्मनों को वहीं रोक कर रखते। वे इस स्थिति में नहीं थे कि उठ पाते। उन्हें जब सिपाहियों ने उठाने की कोशिश की तो वे खड़े रहे और उन्होंने कहा वो उन्हें पुलिया के नीचे उस स्थल में आड़ में लिटा दे। वे वहीं से दुश्मनों को रोकना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक बड़ी कष्टप्रद स्थिति में वे थे। फिर भी उन्होंने दोपहर तक युद्ध जारी रखा और अंत में उनकी वीर देह शांत हो गई। साथियों, इस तरह ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सभी को उनकी वीरता अदम्य साहस पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें जो

अक्टूबर सन 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था। 26 अक्टूबर की तारीख ब्रिगेडियर रविंदर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा नाम कर गए। उनके इस बलिदान को शत शत नमन। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी शौर्य की अमर कहानी, युगों युगों तक दोहराएंगे भारत के हर वासी। तुम हो भारत माँ के सच्चे रक्षक, तुम सा नहीं धरा पर कोई और सा।

तो वाह। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम इंद्र घनश साज और आवाज। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन। बांसुरी पर हैं श्रीधर सेंकरे।

0: चोरों को कैसे भगा दिया?
1: बेटी, डॉगी को कहाँ से ले आई?
0: अरे पापा, मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई। डॉगी ने चोरों को भगा दिया। देखा, मेरे तो कलेजा से निकल गया।
1: चलो, जान बची, लाखों पाए, चोर भाग गए, अब को जाओ चैन से।
0: अगर डॉगी ना आता तो तुम सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो, घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है।
1: अरे भगवान, तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा।
0: शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना

उन्हें भी तो इसकी जरूरत है। इस अजीब से पापा लेकर आना, जरूर लेकर आना दादी। जरूर

0: उठाए जा रही है। कितना दिन पढ़ाया था मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी आप भी रात को देर तक जाती रही। मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें। देखी तो ठीक है पर थोड़े दिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
1: ओह मम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो।
0: अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती फिर भी संभावना से किसी बात की भी हो सकती है।
1: अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है।
0: चलो अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना है वो हमारे भी घर आ सकते हैं।
1: इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए
0: और जैसा अगर आज सपने में आए गए तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा इतनी बड़ी दुकान है अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे।
1: मम्मी इतना डरना नाम किसी नहीं है बस
0: और फिर भी सावधान रहने में हर ही क्या है। तुम्हारे पापा भी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा पर देखो अब तक नहीं आए।
1: पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना
0: क्यों तो है पर वो आए क्यों नहीं।
1: ओ मामा देखो अब 8:30 बजने को है

0: सोचा एक किले का भी किया नहीं जाना, दोनों ले जाता हूँ दोनों।
1: हाँ पहली बार किया कल का काम, अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट लिया था।
0: क्या कहा? क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे?
1: पापा जी आप तो सचमुच डर गए पापा, चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे। मैं तो सपने में भी बहुत डर गई।
0: अरे मैं तो गाड़ी से उतर कर आ रहा था तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को एक किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ वैसे बहुत बढ़िया
1: रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं मम्मा, वहाँ लगता है दूध में बेचारे। देखो जैसे मुँह खोल रही हूँ, जरा दूध तो लेके आ, अब मैं लाते हूँ। पापा पापा ये चूजा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब चिल्ले। अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूजा करेंगे, खास नस्ल के कुत्ते। ठीक है अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ।

0: plastic mega dia. अरे भाई सभी बताओ तो इसमें ये है तुम्हारे के लिए लगते तो बढ़िया शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान गए होंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कुछ लगती है कहाँ जा रहे हो कहाँ चले मुझे दो पिल्ले और चाहिए ना कहा तुमसे मैंने
1: और का क्या मतलब है आपका
0: क्या मतलब ये हुआ मिया कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना
1: कसम इन बिल्लों की गाना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बाबू
0: अच्छा सुनो तुम मेरे साथ चलो वहाँ चलकर सब कुछ ध्यान में आ जाएगा
1: ऐसी बाबू जी आगे घर
0: मैं भी तो तुम्हारी रोटी में ही अपना हिस्सा डालने की बात कर रहा
1: हूँ
0: इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना या
1: अच्छा बाबू जी मैं
0: अरे भाई मैंने कहा ना मैं दो पिल्ले और खरीदना चाहता हूँ तुमने जो हमें दो पिल्ले पहले दिए थे ना और क्या बात है वो तो बहुत बढ़िया लोगों के निकले थे अब तो तुम्हें ध्यान आ गया

0: मुझे दो पिल्ले और खरीदने हैं भैया, किसी रिश्तेदार ने मांगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिल्लों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है।
1: ठीक है बाबू जी, मेरा तो ख्याल था कि यही ही
0: एक बात है, तो कहने की ये बात है कि क्योंकि मैं तुम्हें पैसे घर जाकर ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास है नहीं।
1: हाँ घर चलो, जो है जो है, चलो बाबू जी।

0: क्या आप इसी से वक्त से लाए थे?
1: पापा
0: पापा अभी अभी चोपड़ा अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि ना ये जो है पहले इस कुत्ते वाले की बात तो सुनिए।
2: बेटी तुम जरा दोनों कुत्तों को लेकर तो आओ।
0: अच्छा पापा, अभी अभी उनको अभी भी कुत्ते बोलते हो?
2: कुत्ते वाले के सामने उन्हें कुत्ते नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा।
0: हाँ पापा, लो लो इन्हें ले आइए।
2: भाई भाई ये बताओ कि घर में एक अजनबी को देखकर क्या कुत्ते भौंकेंगे या नहीं?
0: क्यों जरूरी नहीं? अगर अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो फिर कुत्ता कहेगा? ऐसे कुत्ते से तो इधर ही भला।

0: रास्ते देखकर धुन धुनाकर भागे।
1: बीबर तो कुत्ते को देखकर भागेगा ही ना।
2: भाई तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? क्या बुलाऊं पुलिस को? तभी तो तुम मुझे न पहचानने का बहाना कर रहे थे।
0: सर कितना शौक था कि घर में कुत्ता पाला जाए, जो घर की रखवाली भी करे।
3: अभी जो है जो है, लो ये फूल दूसरे के लिए ले लो, ये एकदम बढ़िया के दम से बढ़िया।
2: जो और पिल्ले देने का नाम दिया तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ।
3: अरे बहुत सी बात कर देना, मैं अपने से गलती क्यों करता हूँ? अभी उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, वैसे हम कुत्ते हुए फायदे हैं साहब, उससे बच्चे भेजते हैं, उस दिन भेजने के लिए गिले ढेर थी, इसलिए मैंने गीदड़ के बच्चों को ही आपको दे दिया। लेकिन साहब जिस तक वो

0: अगर छह महीने के बाद ये पिल्ले कुत्ते निकलेंगे तो हम तुम्हें जरूर पूरे पैसे दे देंगे। पहली गलती की तुम्हें माफी
1: मैं जाता है ना।

मेरे दौर की आवाजें दिलों की अनूठी सरबा

भगवद गीता अपने सुनाते हैं गोलियों की रासलीला राम लीला से आवाज भूमि त्रिवेदी की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ कर्णत और संगीत संजय लीला भंसाली का। आइए सुनते हैं।

0: में जो है मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई, और ये मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह जो तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सेलेक्ट करने वाले थे दस्ताव नरगिस
1: और कार्यक्रम में अपने अनुज
2: आज के विविध भारती हर रोज जाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की
1: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

सुविधा गीत आपने सुना फिल्म भारत से, आवाजें श्रेया घोषाल और नक्काश अजीत की थी। गीत से बोल इशाद कामिल के और संगीत विशाल शेखर का।

0: जाती है, तब विधार की बन जाती है, एका की बन के साथ
1: तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
0: विधार से पूछते हैं कुछ मोल लगे।

है गीत आत्मा सुना आपसे लंबा लाहौर से आवाजें नेहा कक्कर कृष्ण कुमार और गीत राष्ट्रीय थी गीत के बोल कनक वापसी और देव कोहली के संगीत तंश वापसी विचार शेखर का आयोजन कहें अब ये गीत

संगीत आपने सुना आप फिल्म विक्की एंड विद्या का वो वाला वीडियो थे। आवाज संजीव चौहान और दिव्य कुमार जी थी। गीत के वो लिखे थे इस कामिल ने और संजीव संदेश शामिल।

दिखाई में आगे बढ़ा। पोलैंड बटोरोकर ने भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते।

see that this argument is being highly disputed. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुबियोनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत

plus a fever, visitor, author, and activity, and sleep, or a picture with your favorite. उन्होंने गाँव में अपनी हित के क्षेत्रीय और व्यक्तिगत मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी बताया। डॉक्टर जयशंकर और श्री रूबी उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

imagine if the trouble would never die out, or they might have actually actualized it. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में

आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एल नीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और

अवस्था बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा।

की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडंगों मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडंगों मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया,

योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 30 करोड़ लोगों तक पहुँच

0: केंद्रीय खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के पास 64 रन के जवाब में महिला टीम ने जीत की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। मोहम्मद रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव प्रसाद ने 3 विकेट जबकि सिद्ध कृष्ण ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत के 451 रन पीछे है। वही कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप

राष्ट्रीय भारत और राष्ट्रीय रिकॉर्ड घड़ी अनिल किशोर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए

श्रेणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS दवास के साथ खेत बचाव अभियान उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की छवि लिखकर आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए
1: मन की बात प्रधानमंत्री आपका स्वागत
2: है। मन की बात के सदन में अगर कुछ चाहते हैं तो आप मन के साथ चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री

0: साल नौ साल
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे जैसे सूरज की पहली किरण छूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, लगी और मध्यम सा कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज को। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल होश शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं है। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अभी हमको जो जर्रा भी हमारे पास नहीं है।

शिक्षा दीक्षा अधेरी के स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सफाया कॉलेज में एडमिशन कर लिया और ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमिता राव के कदम पर चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमिता राव के लिए थी या नहीं थी ये

पर वो नजर आने लगी। पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा शेनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आई और बस ये लगा कि शायद रुपेश पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। साल 2002 में आया निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अस्सी बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं।

छत्तीसगढ़ ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मरने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

निर्देशन फिल्में बनाने वाले जानी मानी कमर्शियल निर्देशक इंदु कुमार की फिल्म थी। साल 2004 में आई टीवी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्त, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, अमिताक्षी दसानी, अमिता राव, सारा शर्मा,

सीन में भी चलते महेश मांजरेकर इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे। शाहिद कपूर और संजय दत्त फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथम लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, विपाशा बसु और शाहिद कपूर।

दो हॉलीवुड की ऑर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित।

से अमृतराव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की चकित थी। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृतराव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली थी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस और इसी वर्ष श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

निकल आता नजर आई। 2009 में हरमन बबीजा के साथ वो

लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अक्षय भारती के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB में, फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म किंग्स ऑफ द ग्रेट जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झाकी फिल्मी सितारों से सभी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं जैसे मेरी आवाज भी पहचान गई। साल 2019 में अभिजीत संत की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाकारी ठाकरे की भूमिका निभाई। अमृता राव ने आरजे अनमोल से